0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारिब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
2: Assalamu alaikum and hello, I'm Laura Conda and I'm the host of the new podcast News and Culture Show. We're going to be talking about all the latest news from around Luton, all the amazing things that are happening in arts and culture and events across the town. You'll be able to catch up and find out what you're doing this week, where you can be going and what is happening in our town. And we really want to hear from you, so please do get in contact and let us know your thoughts every week on Inspire FM.
3: Every Wednesday at 6 p.m.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 5:30.
5: Assalamu alaikum. It's now time for the beautiful recitation of the Holy Quran with English translation by Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais and Sheikh Saud Al-Sudais.

हमने मान लिया, समय ना वो अताना, वरना देख के मानना तो मानना नहीं। देख के कौन माना था? फिरौन। फिरौन माना था देख के, उसने जब देखा के मौत के वक्त वो फरिश्ते नजर आए होंगे, उस वक्त कहा जब डूबने लगा कि मैं रब्बे मूसा पे ईमान लाता हूं, तो उस वक्त क्या कहा गया? अब ईमान लाए, अब तो ईमान लाने का फायदा ही कुछ नहीं, अब तो ईमान लाने का वक्त नहीं, वो तो हो गया, गुजर गया। तो तकवा की पहली अलामत क्या है? अल्लाह से डरने की पहली अलामत क्या है? गैब पर ईमान। और गैब क्या है? अल गैब, जिस पर अल्लाह ने ईमान लाने को कहा और जिस पर उसने ईमान लाने को नहीं कहा, उसको माने या ना माने कोई बात नहीं। मसलन अगर आपने कोई चीज अपनी आंखों से नहीं देखी और कोई आपको बताता है, मतलब कोई आपको बताता है कि जनाब समुंदर की तह में फलां और फलां जानवर पाया जाता है, आप कहे मैं नहीं मानता, तो आपके कोई ईमान में खलल हो जाएगा? क्यों क्यों खलल नहीं हो? क्योंकि अल्लाह ने आपको नहीं कहा कि आप जरूर माने कि समुंदर की तह में कोई जानवर है या नहीं। आपने पढ़ा होगा कि आग के अंदर भी लाइफ है, अब आपके मैं नहीं मानती तो बेशक ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, ईमान में कोई खलल नहीं आता। तो ईमान बिल गैब का मतलब क्या है? उन हकीकतों को मानना जिनको मानने के लिए कहा गया है, दिल से भी यकीन, जबान से इकरार। क्या कहना चाहिए? आमंतु बिल्लाह, कि मैं अल्लाह पर ईमान लाए, व मलाइकती और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबी और उसकी किताबों पर, व रुसुली और उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वल कद्र खैरी व शर्री अच्छी बुरी तकदीर पर, मिन अल्लाह ताला के अल्लाह की तरफ से है, वल बाथ बादल मौत और मौत के बाद दोबारा जी उठने पर, और अमल से उसकी तस्दीक। मुत्तकीन की दूसरी सिफत, व यकीमून अस्सलाता और वो नमाज कायम करते हैं। यकीमून, अकाम यकीमु इकामत, इकामत का मतलब होता है सीधा करना। अरबी जबान में जब लकड़ी को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया जाता है, काट के छील के उसको स्मूथ कर दिया जाता है, तो उसके लिए लफ्ज होता है अकाम अल उद कहते हैं, यानी कि लकड़ी को सीधा कर दिया। तो किसी भी चीज को जब सीधा कर दिया जाए, ठीक ठाक कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं इकामत। बाजार में जब खूब रौनक हो जाती है तो अरबी में कहते हैं अकाम सूक, कि बाजार सीधा हो गया, यानी काम चल पड़ा, शुरू हो गया, बाजार गर्म हो गया। तो यकीमूना का मतलब है वो कायम करते हैं। कायम करने का मतलब ये नहीं कि कोई नमाज लेटी हुई थी तो उसको उठा के सीधा खड़ा कर दिया है, इसका मतलब यह है कि नमाज के लिए जो शरायत हैं, अरकान हैं, उनको पूरा करते हैं। नमाज कायम करने का मतलब क्या है? नमाज को उनकी शरायत और अरकान के साथ अदा करते हैं। वो क्या है? नमाज की शरायत क्या है, अरकान क्या है? सबसे पहले तो वक्त की पाबंदी और किबला की तरफ रुख करना और तहारत, नियत। अगर नियत के बगैर आप सब कर रहे हैं तो उसका फायदा नहीं। और तरीका दुरुस्त होना, जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पढ़ा है उसी तरह पढ़ना। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे तो एक शख्स नमाज पढ़ के जल्दी से तो आपके पास आया और उसने आके आपको सलाम किया, तो आपने फरमाया इरजे फसल्ली फइन्न कलम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ो, इसलिए कि तुमने नमाज पढ़ी नहीं। वो दोबारा गया और उसी तरह जल्दी जल्दी करके वापस आ गया, आके सलाम किया, आपने फरमाया इरजे फसल्ली फइन्न कलम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। फिर वो पढ़ पढ़ा के आ गया, आपने फिर फरमाया इरजा फइन्न कलम तुसल्ली, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। उसने फिर कहा कि आप मुझे बता दीजिए कि कैसे पढ़नी, तो फिर आपने उसको तरीका बताया कि किस तरह जब तुम खड़े हो तो सीधे खड़े हो और इस तरह किरात करो, और फिर जब रुकू करो तो इत्मीनान से रुकू करो, जब रुकू के बाद खड़े हो तो इत्मीनान से खड़े हो, और जब सजदे में जाओ तो टिक के सजदा करो, फिर उठ के बैठो इत्मीनान से बैठो, फिर दोबारा इत्मीनान से,
तो ये जो इत्मीनान

0: से बेहतर होता चला जाएगा। जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट और एक्टर्स होते हैं जो एक ही काम करते हैं, वो यही काम 15, 20, 25, 30 साल से कर रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स उनका काम ज़्यादा रिफाइंड होता है। अगर आप उनके साथ एक जगह हैंडल ही कर लें उस फ्रेम को, स्पेस को, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हमने हाला में किया, वहाँ पर सबसे जूनियर मैं था जो पहली दफ़ा कैमरा फेस कर रहा था, बाकी 15-20 सालों से ये काम कर रहे थे लोग। सो उनकी बहुत सारी फिल्म्स कर चुके थे वो, तो उनके साथ भी काम किया, ठीक ही था। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि बहुत बेहतर किया जा सकता था उसमें, कुछ चीज़ों को वरी करने के बजाय अगर मैं और ज़्यादा अच्छी टेक्निक से करता तो और भी अच्छा हो जाता। तो इस तरह ये चीज़ें खुल कर आहिस्ता आहिस्ता करने और खेलने से ये चीज़ें पैदा होती हैं। कुछ लोग लकी होते हैं, शुरू में ही जिस काम के लिए वो पैदा होते हैं उनके हाथ लग जाते हैं। कुछ लोगों को लोग बता देते हैं आप इसमें बड़े अच्छे हैं, उसमें वो काम करते हैं और उसमें वो एक्सेल कर जाते हैं। कुछ लोग अलॉन्ग द वे सिचुएशन एक ऐसी बन जाती है जिसमें आप एक चीज़ का पता लग जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं। जैसे ये रेडियो का शो, मुझे तो कभी लगता भी नहीं था मैं शाय आदमी हूँ, नेचर बड़ी डिफरेंट किस्म की है, प्राइवेट भी बहुत हूँ, तो मैं ये काम कैसे करूँगा। लेकिन करते करते ये भी इतने सालों तक हो ही गया, अभी भी मैं रोज़ इस पर काम करता रहता हूँ बेहतर करने के लिए इसको। तो इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है। फिर फिनेस इंसान के अंदर होना, आप खाना बनाते हैं कैसे पेश करते हैं, सफाई सुथराई करते हैं कैसे करते हैं, लोगों के साथ चीज़ों का बैलेंस में। अगर आर्टिस्ट एक बंदा, बेसिकली आर्टिस्ट का काम पता है क्या है, आर्ट क्रिएट करने वाला एक ही है जिसने ये यूनिवर्स बनाई, जिसने ये दुनिया बनाई, वो आपको एक ब्रेन वेव देता है। आप उस ब्रेन वेव के अंडर, इन्फ्लुएंस के अंडर एक चीज़ बनाते हैं, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो कोई लिखने की चीज़ है, चाहे वो म्यूज़िक का कोई इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो कॉम्पोजिशन है, चाहे वो शायरी है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उस मोमेंट में आप उस चीज़ को पकड़ते हैं और उसमें आपकी इतनी ज़्यादा से होती नहीं है, आप उसमें से खुद बाहर निकल जाएं और वो चीज़ जैसे है उसको वैसे पेश करने की कोशिश करें। और उसको नोक पलक संवारने में, जैसे स्कल्प्टर होता है ना, स्कल्प्टर जो होता है वो स्कल्प्चर बनाते हुए भी, वो किसी ने जब कहा था ना कि जो मुजस्मा होता है ना वो पहले से पत्थर के अंदर होता है। आर्टिस्ट का क्या काम होता है, वो सिर्फ उसकी जो साइड की फालतू की जो पत्थर है वो हटा देता है और उसके बीच में से वो निकल आता है। तो बिल्कुल इसी तरह आर्टिस्ट का भी एक्चुअल में ये काम होता है कि उसको एक चीज़ है, उसकी ब्रेन वायर्ड होता है एक सर्टन तरीके से, अब उसने उस ब्रेन वेव को पकड़ के उसको कैसे करना है। कुछ लोग बहुत लेज़ी होते हैं इसके साथ, कुछ लोग इसको बहुत एक गिफ्ट को गिफ्ट की तरह संभाल के रखते हैं आखिर तक, तो वो बहुत लंबे अरसे तक कोई चीज़ आपको दे सकते हैं। सो ये चीज़ होती है, कभी ये आपको हिट कर जाती है, कभी आप इसको हिट कर जाते हैं, और कभी एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें आप एक काम करते हैं और वो काम निखर जाता है और उसमें आपको मज़ा आने लग जाता है। उसमें रेसिप्रोसिटी जो है, लोगों को जो चीज़ उसको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, उससे आपको डोपामिन इफेक्ट मिलता है और फिर आप चीज़ों को क्रिएट करने लगते हैं। तो ये एक पूरा सफ़र हो सकता है किसी भी आर्टिस्ट का। कैसा था ये वाला आखिरी पॉइंट?
1: बहुत ज़बरदस्त था।
0: कोई पॉइंट मिस हुआ आज? ठीक है, ये नाइक्विल हल्की सी रात को लेके अगर ये आदमी कर सकता है तो इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है।
1: नाइक्विल और ये हाल है
0: रात को रात को छींके शुरू होगी, तबीयत ऊपर नीचे होगी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी थोड़ी सी ले ले ताकि सो भी जाए और सुबह का काम अब मैंने नहीं छोड़ना, क्योंकि मैंने वादा किया मंडे वेंसडे। तो अगर मैं मंडे वेंसडे को भी नहीं कर सकता, मैंने फ्राइडे ऑफ भी लिया हुआ है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, चार दिन मैंने ऑफ लिए, तीन दिन मैं शो के बारे में और रेडियो के बाकी काम करता रहता हूँ, तो फिर मैंने कहा कम अज़ कम इतना तो कर, इतना करूंगा तो बाकी का काम भी होगा। और बाकी बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं, ये जो मैंने बाकी दिन ऑफ लिए उसमें कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन जो जो मैं कर पा रहा हूँ ना, स्क्रिप्ट के ऊपर कर रहा हूँ, प्लेस के ऊपर कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनाऊंगा, आपका दिल खुशी से गार्डन गार्डन हो जाएगा
1: इंशाल्लाह ताला।
0: ठीक है, और आप इतने दिनों के बाद आए, उम्मीद करता हूँ, और आपने इतना साथ दिया, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लोगों के गोश गुजार किए आपने, ठीक है, उनके कानों में से गुजारे, इस तरह उनके कान साफ रहेंगे। और मेरा ख्याल है वो चीज़ नहीं होगी, वो एक दफ़ा उन्होंने स्कूल हम जाने लगे आर्मी में, तो उन्होंने कहा जी आपके कान साफ करने लगेंगे, फिर कानों में जैसे सैलाब आ जाता था पानी का, आपको ने कभी कराया वो? उसके पानी के अंदर केमिकल चीजें होती हैं और इस तरह प्रेशर दे दे के कान का पर्दा फट सकता था, वो बेवकूफी थी करना। आजकल के जमाने में कोई सेंसिबल आदमी वो काम नहीं करता।
1: नहीं वो पहले जमाने में होता।
0: और एक और जाहिलों ने काम किया, मेरे दांतों में शायद कहीं कैविटी थी मोलर्स में, उन्होंने उसमें मर्करी डाल दिया। अब जितनी भी मैं नई साइंस पढ़ रहा हूँ वो सब के सब कह रहे हैं कि आपने वो मर्करी निकालना है, और जो मर्करी निकालना है वो मैंने जब डॉक्टर से पूछा तो मैंने कहा ये कैसे निकलेगा, तो उन्होंने कहा आप नई नई चीज़ें आ गई हैं जो बड़े हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक पीछे, क्योंकि उसके फ्यूम्स होते हैं, मर्करी तो मतलब कातिल चीज़ है, पता नहीं क्यों ये मरकरी डाल रहे थे उस ज़माने में, लोहे से किसी तरह से काम चला लेते या कुछ और कर लेते। तो अब जो है वो उसको मैं अब जब भी सोचता हूँ कि इसको निकलवाऊँ मरकरी को और उसकी जगह कोई नए ज़माने की अच्छी चीज़ डलवाऊँ।

0: तो उसमें वो कहते हैं कि जी इसके फ्यूम्स के लिए फिर आपको पीछे एक ना एक सॉकेट सी गले में रखनी होती है ताकि वो फ्यूम्स पीछे की तरफ ना जाएं आगे। अब इस बात से मैंने कहा मराने के चक्कर में, ये पहले भी हमने इतने डरे हुए हैं कि दांत साफ कराते कराते बंदे की जान भी जा सकती है। वसीम अकरम की वाइफ याद है ना आपको,
1: हाँ जी
0: वो डेंटल से ही उनको हुआ था
1: नहीं
0: ब्रेन।
1: अजादला, ये सब अजीब की चीज है कि कुछ भी हो सकता है
0: हाँ
1: किसी
0: जी,
1: भी वक्त।
0: गए आप दांत साफ कराने, लेके आप ब्रेन का इन्फेक्शन आ गए। तो
1: बिल्कुल, हुआ है लोगों को,
0: लोग कहेंगे
1: बहुत से
0: पता, लोग क्या
1: लोगों
0: कहेंगे, हमें तो पहले से पता था एक नॉर्मल ब्रेन का आदमी ये काम तो नहीं कर सकता जो बोल के लब आजाद। तो मैं जाते हुए लोग अपनी आंखें कान नाक दे रहे हैं, मेरे किसी काम के तो है नहीं, मैं ब्रेन दे जाऊंगा कि इसको खोलो चेक करो कहाँ पे चोट लगी थी बचपन में। ये जो मैं दरिया में गिरा था घोड़े से और पुल के नीचे से आया था, तो वहां तो सट नहीं लगी मेरे सर में ये।
1: अल्लाह ज्यादा ना, वो एक अलग वाक्य जो आपने सुनाया था, जो आप
0: हाँ
1: गिर गए थे,
0: आई वाज जस्ट
1: तौबा
0: वन ईयर
1: कर।
0: ओल्ड, हाँ जी 1 साल का था मैं, घोड़ी पे मैं
1: आपकी
0: शेर खान
1: बॉडी
0: के
1: में
0: साथ जा
1: अजीब
0: रहा,
1: अजीब चीजें हुई हैं।
0: पता नहीं। और जो भी हुआ उसके बाद मैं बहुत बीमार हो गया था, मेरी माँ कहती है, तो उसके बाद ना कोई चीज़ मेरी फिर एलर्जीज नॉर्मल नहीं रही, मुझे हर चीज़ फिर उसके बाद ही शुरू हुई थी। बट बच गए, उस पानी में सवाल ही नहीं पैदा होता था। एक तरफ, दूसरी तरफ वो पत्थरों का पुल था, उसके नीचे कितने बड़े बड़े पत्थर हो सकते थे बच्चे का जो सर, और जो भी मुझे चोट लगी है उसके बाद से शो निकला है। शुक्र
1: वो
0: है
1: चोट
0: मैं,
1: अच्छी थी, वो
0: शुक्र
1: अच्छी
0: है।
1: चोट
0: कुछ चोटें
1: थी।
0: जैसे कहते हैं ना, कुछ दाग अच्छे होते हैं, इसी तरह
1: बिल्कुल
0: कुछ चोटें भी अच्छी होती हैं लगता है, अगर प्यार से मारी
1: लगता
0: जाएं और रब की तरफ से ना, वो एक लात जो कुब्बे को रास आ गई और उसका
1: है
0: हंच जो था
1: मतलब
0: ना, वो हंच बैक जो था ना, वो सिद्धा हो गया।
1: अज़ादला, यू सच अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: और बेसिकली ब्लेसिंग्स आप लोग हैं, और आपने भी जो इतना अच्छा वक्त हमारे साथ गुजारा इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज एक स्ट्रेसफुल डे को डी स्ट्रेस करने में अपना तीन मेहरबान लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। आज कॉल्स वैसे कम थी, लेकिन मेरा ख्याल है लोग जब आप और हम बात कर रहे होते हैं, और शहनाज जी और हीरा सिंह जी तो फेवरेट लोग हैं लोगों के, तो इनकी डिस्कशन से जो शगुफे फूटते हैं, जो क्लिप्स बनते हैं, और जो शो जिस किस्म का बनता है लोगों को बड़ा पसंद आता है। पिछले तीनों शोज़ जो हैं ये अभी तक बहुत अच्छे रहे, मैं ग्रेटफुल हूँ। और आपको रब जो है वो सेहत और भी अच्छी और बेहतर अता करे, ताकि आप सारे स्वेटर के बटन खुद बंद कर सकें, ठीक है जी, और खुश रह सकें। इसी तरह खनखनाती हुई हंसी, जब आप नहीं थी तो हमने आपका यू आर लिसनिंग टू रेडियो आज़ाद, हेलो हेलो माई डार्लिंग्स, वो सब जो था वो हमने लोगों के गोश गुजार किया और रूहानी तौर पर आपको प्रेजेंट रखा था, कि आपकी ब्लेसिंग्स जो है ना वो हमारे साथ शो में रह सकें।
1: सलामत शहजादा,
0: खुश रहें, ग्रेटफुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, इजाज़त चाहते हैं आपसे, वक्त हुआ चाहता है जी कमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपके लिए खबरनामा, खबरनामे के बाद आपका शो, और आज का जो पोम और आपका ट्रैक जो है हम पे उधार रहा अगले शो में। अगला शो इससे बहुत बेहतर होने वाला है। उस शो से पहले हमने कुछ, अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में बहुत इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट के बारे में हमने आपसे कुछ बातें करनी है, वो भी हम दिसने शो में आपसे करेंगे। कुछ नए टॉपिक्स हमने आपको देने अगले शो के, और बहुत मज़ेदार टॉपिक्स जो पहले कभी किसी रेडियो पर नहीं हुए होंगे, कभी बोल के लब आज़ाद है तेरे मैंने, ऐसे एक दो टॉपिक हैं जिससे जो रिलेटेड है हमारी ऑडियंस से, वो करेंगे हम आपके साथ। कुछ फन क्रिएट करेंगे इन दिनों में, फिर आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक्स, और फिर हमने शो से क्या सीखा, और उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे अपने सीजन 18। ये सीजन 17 आज तक का सबसे लंबा सीजन था, और ये तमाम आप लोगों की मेहरबानियों से हम यहां तक पहुंचे। जो भी टूटा फूटा हमने काम किया और आप लोगों ने उसको सलाम किया, उसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको वो बात तो याद होगी जिसकी वजह से ये शो बना, फैला, फला फूला और यहां तक पहुंचा। ये करेंगे, सब कुछ हो सकता है अगर ये वो की है। लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिए, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। और ये याद रखिएगा, ये जो चीज़ हमने एक आपके लिए बनाई है। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

अपने घर को छोड़ने से पहले अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर लें, और अगर सिक्योरिटी अलार्म मौजूद है तो इसे भी ऑन कर दें और तसल्ली कर लें कि आपका घर चोरों से महफूज है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

गंदम की साथ क्या है ये? बाले बाले बालियां होना चाहिए था, नहीं? बाले बाले ओके। अरबी में गंदम की बाली को सुम्बुला कहते हैं, ये बात अब याद रखनी है आपने, ये कुरान के अजायब में से है। सुम्बुला गंदम की एक बाली। मैं कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था, मैंने पूछा ये उसको अंग्रेजी में कहते हैं ईयर ऑफ कॉर्न और ईयर ऑफ ग्रेन, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो जो उर्दू में क्या कहते हैं, वो जो चीज होती है जो उसके अंदर होती है, वो चीज। तो किसी ने, प्रोफेसर साहब ने कहा बाली कहते हैं, तो बाकी सारे कहते हैं बाली तो ये वाली होती है। तो उर्दू का तो खैर अब जनाजा निकल चुका है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो मैंने एक तो तर्जुमा करना था गंदम की वो चीज़ जिसके अंदर वो चीज़ होती है, वो ज़्यादा समझ में आ जाती है आपको, वो चीज़ आसान रहती है फिर। ओके लेकिन खैर, गंदम की बात सात बाल है, चलो तस्वीर से फायदा हो गया। इसका वाहिद क्या है? सुम्बुला, लिखा हुआ है वहां पे सुम्बुला, लेकिन इसकी जमा अरबी में दो हैं। इस लफ्ज की जमे दो हैं, एक है सुम्बुलात और एक है सनाबिल। सुम्बुलात और सनाबिल। अच्छा, अगर मैं कहूं सबा सुम्बुलात, सबा सुम्बुलात इसका मतलब है सात बालियां बाले। अगर मैं कहूं सबा सनाबिल, फिर भी इसका मतलब क्या है? सात बाले। कुरान में एक मकाम पर सबा सुम्बुलातिन खुदर, सूरह यूसुफ में सात बालियों का जिक्र है, जब वो ख्वाब देखा था बादशाह ने, तो उसने सात बालें देखी थी, है ना? वहां कहा सबा सुम्बुलात। सूरतुल बकरा में इन्फाक की बात की जा रही है कि अगर कोई अल्लाह की राह में खर्च करता है तो उसकी मिसाल ऐसे है कोई एक बीज हो जिसकी वजह से अम्बतत सबा सनाबिल, उसकी वजह से सात बालें उगें निकले। लेकिन वहां पर लफ्ज सुम्बुलात ने इस्तेमाल किया, क्या किया? सराबिल। लेकिन नंबर एक ही है, सूरह यूसुफ में भी सात और सूरह बकरा में भी सात, लेकिन फिर भी फर्क क्या है? एक में एक तरह की जमा इस्तेमाल की, दूसरी में दूसरी तरह की जमा, बकरा में सनाबिल और यूसुफ में सुम्बुलात। यहां तक फर्क समझ आया? सवाल पैदा होता है कि इस फर्क से क्या क्या सीखते हैं हम? असल में अरबी में जमा के मामले में कुछ ऐसी बात है जो उर्दू में नहीं है। उर्दू में होता है वाहिद या जमा, अरबी में होता है वाहिद फिर तस्निया दो, और फिर मुख्तलिफ किस्म की जमा होती हैं। एक तरह की जमा नहीं होती, मुख्तलिफ किस्म की जमा होती हैं। उसमें से दो कैटेगोरीज क्या हैं? इसको कहते हैं जमउ किल्ला व जमउ कसरा, ज्यादा वाली जमा और कम वाली जमा। यानी जमा तो है अरबी में, लेकिन कुछ जमा ज्यादा वाली और कुछ कम वाली। मैं उसकी मिसाल देता हूं आपको। बहर कहते हैं समुंदर को, बुहूर जमा है, बुहूर है जमउ कसरा, यानी बहुत सारे समुंदर। और अबहुर, अबहुर भी जमा है, लेकिन वो है जमउ किल्ला, कम समुंदर, कम समुंदर। ये जमे एक से ज्यादा है। इसी तरह काफिर, काफिर की एक जमा है काफिरून, काफिरून वो बनिस्बत कम है। और कुफार, सुना है कुफार पहले, वो जमउ कसरा है, वो ज्यादा है। और कफरा उससे भी ज्यादा है, तो उसमें तो तीन आ गए, काफिरून, कुफार और कफरा। यहां पर दो जमा है, एक कम है और एक ज्यादा है। सुम्बुलात कम है और सनाबिल ज्यादा है। कुरान भी क्या अजीब कलाम है, दोनों के बारे में एक ही अदद है, सात और सात। लेकिन कुरान ने एक अजीब अंदाज में बताया कि सात सुम्बुलात किसी ना किसी तरह कम है और सात सनाबिल किसी ना किसी तरह ज्यादा है। अब समझने की कोशिश करते हैं। बादशाह ने ख्वाब देखा, ख्वाब की ताबीर क्या थी?
सात सात बालियों की ताबीर क्या थी कि कहत आने वाला है, यही ताबीर थी ना। और जो उगेगा उसको बहुत बचा बचा के रखना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा नहीं है, वो कितना है, कम है। तो कम के सियाक में कहा सुम्बुलात, सुम्बुलात। दूसरी बात हो रही है बकरा में, इंसान एक बीज के बराबर खर्च करे, अल्लाह ताला कहते हैं कि उस एक बीज से मैं सात सनाबिल निकालूंगा और उनमें से हर बीज में उसके जो हर बीज हर सुम्बुले के अंदर 100 बीज होंगे, यानी वो दोबारा डाले जाएंगे, फिर मजीद फिर मजीद फिर मजीद। ये कम की बात हो रही है, ज़्यादा की बात हो रही है, ज़्यादा की बात हो रही है। यहाँ सनाबिल सात उधर है सात इधर है, लेकिन मौजाना तरीके से अल्लाह ताला वहां पर सुम्बुलात और यहां सनाबिल। और एक सूरत मक्की है, यूसुफ मक्की है, और बकरा मदनी है। और इन्फाक की आयात, कहा जाता है कि इन्फाक की आयात बहुत बाद में जाके मदीने में मक्की आयात में आई है, रिवा की आयात के करीब। यानी इन आयात में कई सालों का फर्क है, ना सिर्फ किताबी एतबार से इनमें फर्क है, कई सालों का फर्क। किसी को याद रहेगा कुछ साल पहले मैंने ये बात कही थी और ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, तो उसके मुकाबले यहां पर मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, ये मुमकिन है इंसान के लिए। मुझे ये भी याद मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था आज अभी से 30 सेकंड पहले, मुझसे कहें आपने भी क्या कहा था, मैं अर्नो खुतबे के बाद मैं अंदर बैठा था तो वीडियोग्राफर ने मुझसे कहा खुतबे का टाइटल क्या था, मैंने कहा मैंने क्या बात की थी मुझे तो नहीं याद। लेकिन अल्लाह ताला का कलाम वो इंसान की जबान से निकल रहा है लेकिन कलाम इंसान का नहीं है, वो जिसके पास है उसको मालूम है कौन सा लफ्ज कहाँ इस्तेमाल होना है। सुभान अल्लाह, टाइम तो खत्म हो गया लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं एक और नेमतों के लिए दो मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल। नेमत का लफ्ज उर्दू में है निअमा, अरबी में कहते हैं निअमा, निअमतुन। उसकी भी दो जमाएं हैं, अगर दो जमा होंगी तो एक होगी कम के लिए एक होगी ज्यादा के लिए। ये मैं पहले समझा दूं, जिस तरह सुम्बुलात और सनाबिल था ना वही बात यहां पर होगी। लेकिन इसकी दो जमा क्या है मैं दिखा देता हूं आपको, निअम और अनउम, निअम और अनउम। अनउम कहते हैं नेमतों के लिए लेकिन कम, और निअम कहते हैं नेमतों के लिए मगर ज्यादा। एक है जमऊ किल्ला, दूसरी है जमऊ कफरा। अल्लाह ताला अपनी नेमतों के बारे में कहते हैं वअसबगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, अल्लाह ताला ने तुम पर अपनी नेमतें उड़ेल दी जो जाहिर हैं और जो बातिन है। अभी मैं तर्जुमे की बात कर रहा हूं, क्या कम नेमतों का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए या ज्यादा नेमतों का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि कहा है जो जाहिर हैं और जो बातिन हैं, जो मादी हैं जो गैर मादी हैं, जो मुस्तकबिल में है जो भी हाल में है, जिनका हमें शऊर है जिनका हमें शऊर नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा हो गई। तो निअम जमऊ कसरा। दूसरी तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है, सूरत अन्नहल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हुए अल्लाह ताला कहते हैं शाकिरन, कि वो शुक्रगुजार थे, ली अनउमिही, अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्रगुजार थे, अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्र, कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। लेकिन यहां इस्तेमाल किया अनउम, अनउम कहते हैं बहुत कम नेमतों को। तो अगर लफ्जी तर्जुमा करूंगा ना तो कहूंगा अल्लाह ताला की कुछ नेमतों के शुक्र गुजार थे। सुनने में अजीब लगता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी शुक्र गुजार शख्सियत, वो तो बहुत सारी नेमतों के शुक्र गुजार होंगे ना, तो यहां लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, कुछ नेमतों के शुक्र गुजार थे। हिकमत क्या सिखाई, जब अल्लाह अपनी नेमतों की बात खुद करता है ना, जब नेमतें उड़ेलता है तो सारी नेमतों की बात करता है, जब इंसान शुक्र करने की कोशिश करता है चाहे कि वो इब्राहिम ही हो, तो इंसान की सलाहियत ही में नहीं है कि इतने छोटे इतने कम सालों में अगर वो हर लम्हा भी शुक्र में गुजार दे तो फिर भी बमुकाबिल तमाम नेमतों के जो उसको दी गई
उसके मुकाबले में वो फिर भी कुछ थोड़ी सी ही नेमतों का शुक्र अदा कर सका। उसकी सलाहियत में ही नहीं था कि वो इतनी सारी नेमतों का शुक्र अदा कर सके। तो कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में शाकिरन ली अनउमिही, और उससे हमें क्या सिखाया, हमारा शुक्र कभी काफ़ी नहीं हो सकता, क्योंकि नेमतें हमेशा ज़्यादा होंगी, हमारा शुक्र हमेशा कम होगा। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कम है, वो सारी ज़िंदगी शाकिरन इसम इस्तेमाल किया उनके लिए, यानी वो हमेशा शुक्र की हालत में थे, फिर भी अनउम, उनके शुक्र में कोई कमी नहीं है, ये इंसान की कमी है। इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो तमाम नेमतों का शुक्र अदा कर सके। तो शाकिरन ली अनउमिही, कभी किल्लत का इस्तेमाल, कभी कसरत का इस्तेमाल। अजीब जो उदास करने वाली बात पता है क्या है, तर्जुमे में आप पढ़ोगे इस आयत को या उस आयत को, क्या लिखा होगा, नेमते, उधर सात बालियां, इधर उधर सात बालें, इधर सात बालें, कोई फर्क नजर आएगा तर्जुमे में? नहीं जी, मैंने कुरान तर्जुमे पढ़ा है, मुझे समझ में आता है। जी समझ में तो आता है, लज्जत नहीं आती कुरान की, अगर खूबसूरती नहीं आती। और ये चीज़ इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कल के सेशन में, और नहीं हाँ कल के सेशन में। अभी कल हमने एक सेक्शन शुरू किया था जिसमें हम बात कर रहे थे अल्फाज के इस्तेमाल की, और जिस तरह बारीक लफ्ज़ एक जगह पे सही जगह पे इस्तेमाल किया गया है उसका एक मकसद है। और अगर आपको ऐसा भी लगे कि इसी तरह का लफ्ज़ कहीं और भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अगर आप गौर करोगे तो पता लगेगा कि वहाँ पर इस्तेमाल उसी का फिट होना था, यहाँ पर इसी का फिट होना था। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं कुरान में, मैंने कुछ चुनी है आपके लिए सोचने के लिए। तो आज इस मिसाल में हम जन्नत और जहन्नम का जो आपस में तकाबुल है, कभी कभी इन दोनों का एक साथ ज़िक्र आता है, एक का फिर दूसरे का। कुरान ने ये बात भी की है कि कुछ सूरतों में जन्नत के बारे में बहुत लंबी बात और जहन्नम के बारे में एक दो आयात, और कभी कभार ऐसा भी किया है कि जहन्नम के बारे में बहुत सारी आयात और फिर जन्नत के बारे में एक दो आयत, ऐसा भी होता है कुरान में। और कभी इसके लिए एक आयत, इसके लिए एक आयत, यानी हर सूरत का अपना एक ख़ास स्टाइल होता है, मकसद होता है, और उस मकसद के तहत अल्लाह ताला फैसला करते हैं कि इसमें कितना वज़न किस बात पर ज़्यादा डाला जाएगा। उसकी एक मिसाल सूरत निसा से ये ली गई है, और यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं दिल का हदूद अल्लाह, अपने कुछ अहकाम बयान करने के बाद कि ये अल्लाह ताला की हदूद हैं, वो अल्लाह ताला की हदूद हैं, वमन युतिअल्लाह व रसूलहू, और जिसने अल्लाह ताला की और उसके रसूल की इताअत की, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा, वो उनको जन्नतों में डाल देगा जिनके नीचे से दरिया बह रहे होंगे। इनके नीचे से दरिया बहने से मुराद है कि आप किसी पहाड़ी के ऊपर हैं और उसके नीचे वाटरफॉल है, और यानी ये नहीं कि आपके पैरों के नीचे से या बाघ के नीचे से दरिया निकल रहा है, बताया जा रहा है कि आपकी ऊंची एलिवेशन पे आपकी प्रॉपर्टी है और उसके नीचे आपके दरिया चल रहे हैं, राइट, जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। फिर कहा है खालिदीन फीहा, खालिदीन जमा है, ऊन और ईन जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं अरबी में, तो यहाँ हाल के तौर पर जमा इस्तेमाल किया गया है, यानी वो सब उसमें हमेशा के लिए रहेंगे। जन्नत वाले लोग अल्लाह ताला हमें उनमें से बनाए, खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा के लिए रहें। उसके फौरन बाद अल्लाह ताला ने दूसरी तरफ की बात की, वमन यअसिल्लाह व रसूलहू, और जिसने भी अल्लाह ताला की और उसके रसूल की नाफरमानी की, वह यतअद्दा हुदूदहू, और वो उसकी हदूद से आगे चलता चला गया, तजावुज़ किया हदूद से उसने। फिर कहा युदखिलहू नारन, वो उसको आग में डालेगा, खालिदन, अकेला हमेशा रहने के। तो जब जन्नत में बात की थी तो कहा था इकट्ठे, और जब जहन्नम की बात की तो कहा अकेले, खालिद खालिदीना नहीं कहा इस दफ़ा, और मकामात पर खालिदीना कहा है, लेकिन इस ख़ास मकाम पर सूरत निसा में अल्लाह ताला ने खालिदन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, खालिदन फीहा। तो इसको समझने की ज़रूरत है, ये एक, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं डिलिबरेट, जान बूझ कर दो चीज़ों को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया गया है कि इंसान का गौर उस तरफ जाए कि ये क्या हुआ यहाँ पर। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी बात करते हैं और आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ पर गौर करना पड़ता है। इसकी मैं आपको मिसाल दूँ कि अगर आप किसी छुट्टियों पर जाते हो, वेकेशन पर जाते हो किसी खूबसूरत जगह, लेकिन अकेले जाते हो, रेस्टोरेंट में गए, कितनी की टेबल, एक की टेबल जी। आप होटल में गए, एक का कमरा।
बाहर टूर पे गए, कोई व्यू देखने, कोई माउंटेन देखने, कोई वाटरफॉल देखने, कोई स्कीइंग कर, अकेले जा रहे हो, डिप्रेसिंग होता है कि नहीं? और अगर आप गए भी हो अकेले, तो मुझे तो काफ़ी ट्रैवल करने का मौका मिला, वो बहुत दफ़ा फैमिली के साथ भी गया, बहुत दफ़ा अकेला भी गया। और जब अकेला गया तो जो मेरे होस्ट हैं वो कहते हैं, चले हम आपको फ़लानी जगह लेके जाते हैं, फ़लानी जगह लेके जाते हैं, इस शहर में ये बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत है। मैं कहता नहीं, मुझे बस काम करना है। और यानी बहुत सारे दुनिया के शहर ऐसे हैं जिनका मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं गया हूँ, मुझे होटल पता है, एयरपोर्ट पता है, और जो कन्वेंशन सेंटर है वो पता है, और कुछ नहीं पता, यू नो। क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ नहीं हो, दोस्त के साथ नहीं हो, तो बाहर जाकर टूर करना और मज़े करना, उसका मज़ा ही नहीं है दोस्तों के बाहर उसका। अगर आप जाओगे भी ना तो क्या करोगे, वहां जाके वहां से फोटो लोगे, और फोटो लेके फौरन क्या करोगे, विश यू वर हियर, आप यहाँ पे, काश के तुम यहाँ पे होते, इस जगह देख के तुम बहुत याद आ रहे हो, तुम बहुत याद आ रही, राइट? यानी मजे की चीज का कोई मजा ही नहीं जब तक कंपनी ना हो, मजे की कंपनी ना हो, यू नो। तो अल्लाह ताला ने जन्नत में हमें बड़ी अजीम चीजें भी दी हैं, लेकिन वो सारी अजीम चीजें इतनी अजीम ना होती अगर हम अकेले बैठे होते। अब देखो, कुछ लोग स्पोर्ट्स देखते हैं, हाँ, अब स्पोर्ट्स अगर अकेले बैठ के कोई मैच देख रहे हो, एंजॉय तो करोगे, लेकिन दोस्तों के साथ बैठ के मैच देख रहे हो, अलग एक्सपीरियंस है कि नहीं? वही एक ही रोड ट्रिप है, आपने इस शहर से उस शहर जाना है, आप अकेले ड्राइव कर रहे हो, वही रोड ट्रिप है, आप दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फैमिली के साथ नहीं, वो तो अजाब की एक शक्ल है, लेकिन दोस्तों के साथ आप सफर कर रहे हो, उसका अपना मजा है, वो सफर याद रहता है आपको, प्रोग्राम याद कम रहेगा, वो सफर आपको याद ज्यादा रहेगा, जो हंसी मजाक रस्ते में होता है, जो कंपनी होती है। तो अल्लाह ताला ने खालिदीन में इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि आप जन्नत में वो चीजें, तो दरिया तो है, लेकिन दरिया में दोस्तों के साथ एक को धक्का मार के उसको अंदर घुसा दिया, फिर खुद भी घुस गए और हंसी मजाक किया, यू नो, यतनाज़ऊना फीहा कासन, एक दूसरे से कब छीन रहे होंगे, खींच रहे होंगे, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे होंगे। तो ये जन्नत की एक बड़ी खूबियों में से है कि वहां हम इकट्ठे होंगे और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे होंगे। दूसरी तरफ जहन्नम में बहुत सारे अजाब हैं, लेकिन उन अजाबों में एक मजीद अजाब का इजाफा पता है क्या है, कि वहां हर इंसान को लगेगा कि वो अकेला है, अकेला है। यहां भी अजाब की शक्लों में एक अजाब की शक्ल है जेल, दुनिया में कैद, और कैद में सबसे तकलीफ देने वाली कैद पता है किसे, उसे क्या कहते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। किसी को किसी कैद खाने में डाल दो, उसको बाकी कैदी की आवाज भी नहीं आ रही, किसी को उसकी बात सुन भी नहीं रहा, वो अकेला है, उसको अकेले रखो, सालों अकेले रखो, 24 घंटे में से 23 घंटे अकेले रखो, नीचे से खाना स्लिप कर दो, वो पागल हो जाएगा। यानी उसको बाहर से टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है, उसका अकेलापन उसको टॉर्चर कर रहा है। और अकेलापन ऐसी अजीब चीज है, मैं तो इस बारे में और भी अब सोचने लगा हूं, क्योंकि मैं एक स्कूल में गया था, वहां पर मेरा बच्चों के साथ मेरी कुछ बात हो रही थी, तो एक तरफ तकरीबन 300-400 लड़के थे और एक तरफ 300-400 लड़कियां थी। तो हमारे देसी स्कूल था एक, जहां था उसकी खैर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे तर्ज का स्कूल था। तो प्रिंसिपल और पेरेंट्स और न्यूज़पेपर वाले लोग और मीडिया वाले लोग सारे पहली रोज में बैठे हुए थे और पीछे सारे बच्चे बैठे हुए थे। तो बहुत वो जो हमारे, मैंने आपको बताया था, जो शुरू में तारुफ होता है ना, 15 लोग तारुफ करने आते हैं एक दूसरे का, अब हम बुलाते हैं स्टेज पर अगले तारुफ करने वाले, जो उससे अगले तारुफ करने वाले को बुलाएंगे। तो उन्होंने सारे वो जश्न किए, फिर उन्होंने मुझे बहुत बड़े फूल पकड़ाए, अब मैं कहाँ रखूँ इन फूलों को, मुझे समझ नहीं आ रही थी। और फिर अच्छा, वो फूल वो लेके भी गए, दे भी दिए, फिर ले भी गए वो, तो वो आसानी हो गई मेरे लिए। फिर उन्होंने आखिर में जाके अब मुझसे कहा कि आप बच्चों को एक घंटे का लेक्चर दें। मैंने कहा है, बच्चे पहले कम अजाब में, मैं उनको एक घंटे का लेक्चर दूँ? मैंने 10 मिनट बात की बच्चों से, फिर मैंने कहा अब मैं बच्चों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल फौरन स्टेज पर आ गए,
जिसको सवाल पूछना है वो स्टेज पर फौरन ये साइड पे माइक लगाए हुए थे, उधर आके सवाल पूछ ले। कितने बच्चे उठे होंगे पता है आपको? वो सजाए मौत है। उसने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो प्रिंसिपल को अच्छा नहीं लगा, उसके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा, उसके टीचर को अच्छा नहीं लगा, बल्कि वो जा भी रहा होगा ना ठीक से देख के, ऐसे ही है ना। किसी अगर उसके जहन में सवाल होगा भी, उसकी जरूरत ही होगी पूछने की। तो मुझे पता था इस बात का, तो मैंने कहा देखें ऐसा करें, कैमराज वगैरह ऑफ कर दें, मैं माइक भी ऑफ कर रहा हूँ, मैं इधर बच्चों के सेक्शन में जा रहा हूँ, आप में से किसी ने पूछना हो ना सवाल, पेरेंट्स और टीचर्स वगैरह आप पीछे रहें, आप साथ ना आए। आप में से जिसने कोई सवाल पूछना है आप मुझसे पूछ लें। और फिर मैं वहाँ से होके आई वेंट टू द बॉयज सेक्शन। यहाँ 3 घंटे लगे, वहाँ 3 घंटे लगे।

0: इतने, और फिर मैं मुझे इतनी, एक एक बच्ची ने पूछा होता तो ठीक है, मैं कहता को बात बता देता उसको, दूसरी ने पूछा, तीसरी ने पूछा, चौथी ने पूछा, फ्रंट सेक्शन में पूछा, बैक सेक्शन में पूछा।
1: मैंने कहा ये तो कुछ कुछ और ही मामला है।
0: तो अमेरिका वापस जाने के बाद मैंने फिर कुछ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से बात की, कुछ सोशल वर्कर्स से बात की, कुछ टीन काउंसलर्स से बात की कि ये क्या सिचुएशन है। तो एक्चुअली बात सामने आई कि अब हम इस दौर में हैं, जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ता गया है ना, टीनेजर्स में, कम उम्र के बच्चों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और एक्सट्रीम लोनलीनेस, यानी अपने आप को अकेला समझना कि किसी को मेरी बात समझ नहीं आती, कोई मुझे नहीं समझ सकता, मैं अब बिल्कुल आइसोलेट हो गई हूँ या आइसोलेट हो गया हूँ, उसकी फीलिंग्स बढ़ती चली गई। और दुनिया जहां में कम उम्र के बच्चों में सुसाइड बढ़ गई है, और ये भी एक अजाब का ही मंजर है ना। यहां पर कहा युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, अकेला उसको आग में जलाया जाएगा, यानी अकेलापन भी एक तरह की आग है, अकेलापन भी एक तरह का अजाब है। यहां तक कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में डाला गया और फिर उसके बाद उनकी तस्कीन के लिए, उनको सुकून, जन्नत में सुकून नहीं था, इसीलिए कहा खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, आप और आपकी आपकी ज़ौज अब जन्नत में सुकून पाए, क्योंकि अकेलेपन में सुकून नहीं था। और कहा तुम्हें अज़वाज बनाया ताकि तुम एक दूसरे में सुकून ढूंढ सको, तो अकेलेपन से सुकून चला जाता है। तो यहां पर अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ बहुत ही बारीक अल्फाज में इस हिकमत की तरफ इशारा किया। अच्छा,
2: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: ये सवाल वो रसूल को ही क्यों चुना? किसी ने मुझसे आके पूछा था, अच्छा अल्लाह ने अरब रसूल क्यों चुना, चाइनीज क्यों नहीं चुना, अफ्रीकी क्यों नहीं चुना, यूरोपियन क्यों नहीं चुना, फलाना क्यों नहीं चुना? इसका जवाब अल्लाह के हाँ एक सादा सा जवाब है, अल्लाहु यस्तफी, तब से बात खत्म। यहूद ने कहा कि ये तो हमारे पास तो खास पेपर्स हैं कि रसूल हमारे यहां ही आता है, ये तो इनके पास तो पेपर वर्क नहीं है, ये तो बनू इस्माइल से हैं, इनके पास तो सिटीजनशिप नहीं है रिसालत की, इनके पास कैसे आ गया, ऐसे कैसे कबूल कर लें? उनका मसला भी क्या था कि वो अरब है और वो बनू इस्माइल में से नहीं है।
3: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
4: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
5: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: फोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जलसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
2: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by the world famous Qari Mishari Rashid Ali Farsi from Kuwait.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.